पहरों आज से तकरीबन 2,700 साल पहले एक गुप्त अंधेरी चट्टान के सीने में छुपा हुआ है, यानी हिस्किया सुरंग, जिसे सलवाम सुरंग भी कहा जाता है। मैं चाहता हूं कि आप थोड़ी देर के लिए एक मंजर का तस्वीर करें। एक शहर है जो मुहासरे में है, बाहर से आने वाले लश्करों के कदमों की चाप सुनाई दे रही है, जबकि अंदर लोग प्यास और पानी की शदीद लगी से निबर्द आजमा हैं। जब बात पानी की हो तो हर चीज थम जाती है, क्योंकि पानी सिर्फ जिंदगी नहीं बल्कि एक शहर की मुजाहिमत और उसकी उम्मीद होता है। एंड इन मुश्किल दिनों में एक ऐसा फैसला किया जाता है जो यरूशलम की तकदीर बदल देता है। शहर से बाहर वाकई जेहून के चश्मे का पानी एक बहुत बड़े पहाड़ को काटकर शहर के अंदर मौजूद शिलवाम के तालाब तक लाया जाएगा। मगर उस दौर में ना तो कोई नक्शा मौजूद था और ना ही पैमाइश का कोई जदीद आला। फौरन ही खुदाई करने वाली दो अलग अलग टीमें बनाई जाती हैं। एक टीम सुरंग के एक सिरे से खुदाई शुरू करती है और दूसरी बिल्कुल मुखालिफ सिम से। वो घुप अंधेरे में सिर्फ मिट्टी के चिरागों की टिमटिमाती रोशनी में काम करते हैं। पहाड़ के अंदर कुदाल चलने की आवाज़ें गूंज रही हैं और वो एक दूसरे को देखे बगैर मीटर ब मीटर एक ही हदफ की तरफ बढ़ रहे हैं। और फिर तारीख का शायद सबसे हैरत अंगेज इंजीनियरिंग का शाहकार वजूद में आता है। क्या आप ये बात जानते थे? तकरीबन 2,700 साल पहले बगैर किसी जदीद टेक्नोलॉजी के चट्टानों को तराशने वाली ये दोनों टीमें पहाड़ के बिल्कुल दरमियान में 1 मिलीमीटर के हिसाब की दुरुस्तगी के साथ आपस में मिल गईं। मजदूरों को जब पहाड़ के अंदर से एक दूसरे के कुदाल चलने की आवाज़ें करीब से सुनाई देने लगीं तो उन्होंने आखिरी चंद मीटर का फासला इंतहाई जोश व खरोश से खोदा और बिलाखिर एक ही नुक्ते पर एक दूसरे को गले लगा लिया। आज के दौर के इंजीनियर्स भी हैरत से इस बात का मुतालिया करते हैं कि उस दौर के महदूद वसाइल के साथ ये बारीक बीन हिसाब किताब कैसे किया गया होगा। और इस सबसे खूबसूरत बात यह है कि आज भी अलकुद्स जाने वाले जायरीन 2,700 साल पहले बनाए गए इस सुरंग के अंदर घुटनों तक आने वाले ठंडे पानी में चल सकते हैं। लेकिन अलकुद्स का ज़ेर ज़मीन हाफिज़ा सिर्फ पानी की इन सुरंगों तक ही महदूद नहीं है। जब आप ज़रा और आगे बढ़ते हैं तो आप ख़ुद को ज़मीन से कई मीटर नीचे दफन एक कदीम रूमी सड़क पर पाते हैं। एक लम्हे के लिए रुककर जब इंसान सोचता है तो दंग रह जाता है। आज जिन जदीद सड़कों पर गाड़ियाँ चल रही हैं और लोग भाग दौड़ कर रहे हैं, उनके ऐन नीचे वक्त की थमी हुई पथरीली राहें बिछी हुई हैं। कभी इन पत्थरों पर ताजिर मसाले लेकर गुजरते थे, रूमी सिपाही गश्त करते थे, दूर दराज के इलाकों से आए हुए जायरीन चलते थे और उन गलियों में बच्चों के कहकहे गूंजते थे। आज हम उनके कदमों तले दबी मिट्टी के ऊपर जिंदगी गुजार रहे हैं, जबकि तारीख खामोशी से हमारे पैरों के नीचे सांस ले रही है। लेकिन उन पुरसरार जेर ज़मीन रास्तों का क्या? माहरीन आसार कदीमा अभी तक इस बात को पूरी तरह हल नहीं कर पाए कि अलकुद्स के नीचे बनी उन तमाम सुरंगों का असल मकसद क्या था। क्या यह सिर्फ पानी की निकासी के लिए थी, या मुहासरे के वक्त फरार होने के रास्ते थे, या फिर ये वो खुफिया इबादतगाहें थीं जहां लोग पनाह लेते थे? शायद ये सभी कुछ था। मुख्तलिफ अदवार में हर एक रास्ते को अलग अलग मकसद के लिए इस्तेमाल किया गया होगा। अलकुद्स एक ऐसी किताब की मानंद है जिसका आखिरी सफहा कभी नहीं लिखा जा सकता। जमीन के नीचे से निकलने वाला हर पत्थर माजी की एक नई कहानी हमारे कानों में फूंक देता है। हम एन उसी मोड़ पर एक बहुत ही हसास और अहम मामले का जिक्र करना जरूरी है जो आज के दौर में भी अपनी अहमियत बरकरार रखे हुए है। अलकुद्स में की जाने वाली बाज़ आसार कदीमा की खुदाइयां अब सिर्फ एक साइंसी तहकीक से कहीं बढ़कर हैं। ये शहर के सकाफती विरसे के तहफ्फुज़ और उसकी तारीखी शनाख्त की तशरीह के लिहाज से बड़े बैनुल अक्वामी तनाज़ियात के मरकज में आ चुकी है। यूनेस्को समेत कई बैनुल अक्वामी तंजीमें अक्सर ये याद दिलाती रहती हैं कि अलकुद्स यहूदी मसीही और मुस्लिम मुआशरों का एक मुश्तरका विरसा है। वो इस कसीरुल सकाफती और कसीरुल तहजीबी ढांचे के तहफ्फुज़ पर खास जोर देती हैं।
دوسری طرف فلسطینی ماہرین اور ثقافتی ورثے کے نمائندے ایک جائز اور انتہائی سنگین انتباہ جاری

करते हैं। वो गहरे अंदेशे का इजहार करते हैं कि जमीन के नीचे की ये जाने वाली ये बेलगाम खुदाइयाँ शहर के हज़ारों साल पुराने तबई ढांचे को नुकसान पहुँचा सकती हैं, हत्ता कि मस्जिद अक्सा समेत दीगर कदीम इमारतों की बुनियादों को कमज़ोर करके इन तारीखी आसार और ज़मीन के ऊपर की ज़िंदगी को बराह रास्त ख़तरे में डाल रही हैं। मजीद बरआँ, शहर की इस मालामाल शनाख्त को सिर्फ एक मखसूस तारीखी नज़रिए तक महदूद करने की कोशिशें भी इन खदशात को बढ़ाती हैं, क्योंकि अलकुद्स को अलकुद्स बनाने वाली चीज़ ये नहीं है कि ये किसी एक दौर या किसी एक तहजीब का रहा है, बल्कि इसकी असल खूबसूरती और दौलत इस बात पे छुपी है कि इसने हज़ारों साल से यहाँ से गुजरने वाली तमाम तहजीबों के नक्श अपने सीने पर सजा रखे हैं। ज़मीन के नीचे से निकाले जाने वाला हर पत्थर हमारे सामने उस सच्चाई का एतराफ़ करता है कि अलकुद्स पूरी इंसानियत का मुश्तरका हाफिज़ा है। शायद कुछ शहर सिर्फ आसमां की तरफ ही नहीं फैलते, कुछ शहर अपने हाफिजे को ज़मीन के नीचे छुपा कर रखते हैं। आज हमने अलकुद्स की ज़ेर ज़मीन तहों का एक छोटा सा सफ़र इकट्ठे तय किया। हमने उन कहानियों पर कान धरे जो ये पत्थर सुनाते हैं, और हमने देखा कि एक शहर के नीचे दरअसल कितने शहर आबाद हो सकते हैं। लेकिन इस सरज़मीं का हाफिज़ा सिर्फ ज़मीन के नीचे ही तो सांस नहीं ले रहा, ये कभी किसी कारीगर के नीले और सख्त हाथों में, कभी सदियों से ना बदलने वाले किसी हुनर में, और कभी सब्र के साथ परवान चढ़ने वाले जैतून के दरख्त के साए तले अपनी ज़िंदगी बरकरार रखे हुए हैं। चुनांचे अगले हिस्से में हम ज़मीन के नीचे से निकलकर उन कारीगरों के हाथों को छुएंगे। हम फ़लस्तीन के उन कदीम फ़नून, मेहनत और उस मिटाए ना जाने वाले सकाफ़ती हाफिज़े के नकूश तलाश करेंगे जो सदियों से ज़िंदा हैं। अगली किस्म में दोबारा मुलाकात होने तक हम फ़लस्तीन की अन छुपी हुई कहानियों को बेनकाब करते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़। फ़िलिस्तीन की तारीख और पसे पर्दा कहानियाँ।